0: warga menyelamatkan barang-barang mereka. Ribuan rumah terendam banjir memaksa banyak keluarga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga juga terlihat menggunakan rakit kayu darurat untuk melintasi kawasan yang tergenang. Sementara menurut pejabat setempat, 100 hingga 125 ribu warga terdampak banjir ini. Banyak rumah mengalami kerusakan dan sejumlah posko penampungan telah disiapkan bagi para pengungsi. Pihak berwenang mengonfirmasi, setidaknya satu orang meninggal dunia akibat terbawa arus banjir. Sementara tim penyelamat terus mengerahkan puluhan perahu untuk mengevakuasi warga serta menyalurkan makanan dan obat-obatan.
1: जिसके अब आई है 18 साल बाद और मुझे तो अभी 4 महीना हुआ है मैंने यही रोडी पर मकान लिया था और बिल्कुल पूरी तरह डूब चुका है और न कोई माल निकाल पाया हूँ न कुछ निकाल पाया हूँ इसी तरह अपने बीवी बच्चे और लड़के को लेकर भाग आया हूँ सुबह 8 बजे से बैठा हूँ कि कोई नाव आ जाए तो मैं अपना सामान थोड़ा सा और ऊँचा कराऊँ दोनों फ्रिज डूबी पड़ी हैं किचन पूरा डूबा पड़ा है 3-3 फुट तक पानी अंदर जा चुका है मगर किसी ने कोई मदद के लिए नहीं।
0: Demikian informasi dalam headline news kali ini dan selamat bagi Indonesia, kami lanjutkan kembali untuk Anda.
2: Sound of Knowledge.